0: दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: रेडियो सुनो 91.7 FM।

0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन। चेन्नई बीट्स
1: तमिल हिट ऑफ द आवर
2: इन द आर्ट ऑफ पोदुमा कुलंदा।

0: सुनो 91.7 FM Qatar's favorite radio station. Radio Suno.
1: अच्छा तो हम चलते हैं. अच्छा